0: जतैसे पुआ मादे माने ते काती
1: ना आता छावा सापन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपने चल गए था कुछ कराए था वो सब कुछ सांप बिखाह थे नहीं रहता
0: बिखाह हो कि नहीं हो कका कसी कसी ही ना तंदाई
2: ले नेपाल में पादिना बिखाह सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठहर गए था जो उन खास कहीं का रातिक समय में घर भीतर पैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर सेकर तरह कटला पास है देह भाग जो निचलना कहीं का सांस ठहर जो निशेकना में से लक्वा हुई सेक था और उन ठहर डोम जो उन बड़ा रिशाह में रिक था इनकर फाँट फुले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कहीं का संजय ध्यान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और ठहर कैदी जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तरह एक सक्कु भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकार ना बाघे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तरह हिंकना कटाई एकदम खतरनाक था
3: बरखा छा को अनाज बिजली समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूठ मिलाकर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप के कारण सापन का बचारा नासिदे सापन का दसाई का घटना झूठ मिलाकर लग पा जाए
4: झूठ जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपवा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: राम इलर काफी कबू का पी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था काकना हो काकना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

सभा का उद्घाटन को कार्यक्रम यही यही सकिए अब म नगर सभा को कार्यसूची प्रवेश करना चाहूँ।

0: टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकाले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, बर्घर सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न, सुझाव, गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते, समय बिहान 8 बजे, स्थान एक नम्बर वाड़ा कार्यालय, नगर विकास समितिको भवन सिटी हल नजिक, टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
3: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझी भएर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलोहरू, कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ, निकेरी बुझी भएर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौं।
4: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौं।
5: सतर्क रहौं, ठगीबाट बचौं।
4: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश।
6: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
7: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
8: जब देखनो तुहिन है।
7: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती, कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत, गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915612655। साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

jika pun nawarbalika kepada semua benda, pasti mungkin saya kira bagaikan bahaya wapni. Diri nasi teh gula alam. Jadi abimana jika sambar dasar ini sahulnya kan, tapi saya tu putih putih. Ada kotak kan? Jadi benar, jika pun nawarbalika ni. किसी का मर्म सम्मान जिसको मर्म तो दिगो पंदा कायम कर सकें भाई पश्चिम दक्षिण साइड का कृषि योग्य कृति भोलि जगह प्रणाली उत्सव के रूप में मनेर भर सकते जो अभी भैया रामी किसी खाली था इनका पुरवाला मुझे एक ड्रग और तो जिंदगी में भाई क्या किसी ड्रग का आदमी परानी गर्म पानी स्थिति अवस्था पर था ये सब तो पानी इनका पुर नगर पानी का निवेल में ध्यान देना अति आवश्यक तो लगता था और किसी का नहीं मैं पटक पटक पटक तरह तरह भंगी लाए किसी मस्तू आमी भाई बातावरण सुंदरता मात्र हरा भरा अथवा सुंदरता मात्र सुंदरता कि आंखा देखने सुंदरता मात्र होना मन ने देखने सुंदरता होद तथा जे नीति बोलि अशक्त अपना मैत्री जो पाटो वहां पर युक्त भैन कहीं सुंदर हो सकते हम नगरपालिक सेवा दिने अपना सेवा दिने कई साइकिल व्हीलचेयर तो सीधा खड़ी हो तो फुटपाथ शॉप में कहीं हिंदू देखने ये फुटपाथ बड़ी बहुत दूर देखने वाले भनी रहे फुटपाथ में क्या टाइम कति आवश्यक होता ठाव ये फुटपाथ बीच में शॉप भट्टी पहुंचन यी व्यवस्थापन नगरिकन हमें वातावरण शांतिपूर्ण विकास और सुंदरता में सुंदर विकास पर मात्र परिणाम कर व्यर्थ तेगरी सामुदायिक विद्यालय और संस्थागत विद्यालय में शैक्षिक गुणस्तर को एकदम अंतर कारण सामुदायिक विद्यालय में प्रचंड शक्ति रोक्षा पात्र सर्वोत्त सामुदायिक विद्यालय में दर विकास पढ़ाने शिक्षक मास्टर्स लगाई संस्थागत विद्यालय में अभी एसएससी का विद्यार्थी प्लस टू पढ़ाने शिक्षक पढ़ा दक्ष ढंग पाँगा उच्च शिक्षा गुणस्तर वहां को जन सरकार ने मापदंड दिया लोक सेवा शिक्षक सेवा पास कर नशक्त भाग शिक्षक पढ़ाई कई भिन्नता हमारा शिक्षक जब समय लोक सेवा पास कर सकतासम मेहनत करने लोक सेवा पास कर सके मेहनत कर साधी भाग हो इसमें स्थानीय निकाय को मात्र है समग्र सरकार के ध्यान जान आवश्यक मान लगे यदि शिक्षक शिक्षक कर्मचारी स्थानीय सरकार का कर्मचारी नहीं नमाने हो आज यह एक किसिम को नवसभा उत्सव रूप हो यहां प्रत्येक वा नगरपालिक संपूर्ण कर्मचारी साथी उपस्थित हो तर ती नगरपालिक अंतर्गत शिक्षक साथी उपस्थित होते ये नगरसभा में उपस्थित सबके कर्मचारी आप उपस्थित हाथी गुण तर शिक्षक साथी देखने बिहान दुईजना शिक्षक सर जो घर में देखे थे कि कति गाड़ी में पुग्न भाग या मोक्त लगन सकता हो शिक्षक कर्मचारी स्थानीय अंतर का कर्मचारी समावेश नगर हो या के हो मज्ञ

0: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे जो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय को सार्वजनिक सुनवाई होने बारे को सूचना। टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय को आर्थिक वर्ष 2082-83 में भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रम को बारे में सार्वजनिक सुनवाई होने भएकाले टोल विकास संस्था का प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समिति का पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दल का प्रतिनिधिहरू, बरघर सामाजिक संघ संस्था का प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ा को काम र सेवा प्रवाह का बारे में प्रश्न, सुझाव, गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिता का लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते, समय बिहान 8 बजे, स्थान एक नम्बर वाड़ा कार्यालय, नगर विकास समिति को भवन सिटी हल नजिक, टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।

0: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युता आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो।
0: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्तेका बाले मनकै कुरो हर्यो, छोट त बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-231।
3: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ?
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
1: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
5: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
3: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
2: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
1: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
2: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 9844-48-673 र 9814-68-0204।
7: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
8: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
7: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
8: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
7: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

जयगुरु बाबा, घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्षण आबीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका पूरे एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मीट के अस्त्र लाख का बैठक सक रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग स्वागत के संगे अभिवादन करे बैठक में बैठ के साथ देते संगारी शिवी जी और मैं बाटो अपनी अपने संगे मैं संगारी कसिन बा हाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यापार में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में भी वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी और कार्यक्रम में आईबी कल से अपन रोजल खोजल सोचल मन पर गीत सुने के लगाई भी विशेष करके थारू भाषा के कौन गीत सुनना चाहबी वो गीत को बोल बताइबी स्पष्ट रूप में गीत मन पड़ना के दुठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के हो से एक तो नाम और अंतिम में चाहे दुठो कारण सहित अंतिम में एक ठो नाम और कहबी कल से हमारे गीत अपने होकर जरूर सुनाब तो अपने जहां हुई भी जोन ठाव में ही भी आजकल व्यस्त के बावजूद हो खेती किसानी के बेला हो संगारू के हेरी न लबलब आषाढ़ के मध्य मध्य समय से पानी शुरू हुई आषाढ़ के लगभग लगभग आधा दिन आधा महीना सम पानी नहीं आये हेरी ना आधा महीना से शुरुआत हुई बा जब जब पानी आई तो अपने ठाव में कसिन बा माऊ अवस्था खेतो लगे न मेरे का अवस्था बढ़िया बनाये कि नहीं बनाये कसिन बा पानी वर्षा के पानी कसिन के पड़ल कही के अपने संगे हमें रमाइल गप करना पर बात करीब करीब 1:45 बजे सम कार्यक्रम में सहभागी जनाबी कार्यक्रम में आईबी का नाम जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करा एक रमाइलो गीत से गीत के बाद से मैं डायल करते कर भी 91 5 61 255 लाइन खुलेगा।

लगेबो बिहार छुपुक छुपुक छुपुक छुपुक छुप बेलकुले रमाइलो गीत झोली कार्यक्रममा बाटोमा मिसन भर्खरै रेडियो खरली विकासी हो रेडियो टिकापुर एफएम 1 MHz मार्फत सुन्ती बाटी आफ्नो अपन रोजल खोजल सोचल मन परल अपन मतलब जुन गीत थारो भाषा के गीत सुन्न चाहबी गरे छ आफ्नो ग्रामर सुनेक लाग कल गरि सक्थि 091-561-255 अथवा 0916-1255 नम्बर खोला बा फटाफट डायल गरि गर्छ कार्यक्रममा आफ्नो कुरा रमाइलो सहभागिता रही सङ्गाती आज बदर घमहा टाइप के बा घाम टोबा मने गारे के एक बार पानी तो नहीं पर्थ तर फेन घाम बाहिरी बद्री असक असक फेन घाम बा बद्री लागे हस फेन सत्कार घाम करे हस फेन कसिन तर घाम फेन उसिन झटकार नहीं हो तर पानी फेन परे असक नहीं हो घाम फेन करे हस सक नहीं हो तर फेन घाम बा अस्ते हो मौसम आजकल के तो कसिन बा खेत बस एक डरली या सिक्न क्रम में बाती नहीं लागत जहां प्रविधि सब कुछ पुगल बा जैसा खेतवा में मतलब पानी लागता गले से बोरिंग मोटर के पानी पुगता गले से या कुलवा के पानी लागता गले से वहां लिंग चाहिए खेतवा चाहिए सेक डाल हुई बिसायत लागत में और जहां प्रविधि नहीं पुगल हो जहां पानी मतलब नहीं पुगट हो कुलवा के पानी बोरिंग मोटर के पानी नहीं पुगट हो वर्षा के पानी से लगे ठाव में शायद मेहनत लागत अपने होंगे उचित चाहिए बरखा के मतलब आश्रय लाग के बैठल भी कना लगती बाई तो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रहे से फिर कार्यक्रम में सहभागी जने भी कार्यक्रम में भी कार्यक्रम में अपने हमारा सहभागिता भी करना मैं अपने जानकारी करना चाह हम विशेष करके 1:45 बजे से यात्रा कर भी और अपन रोजल खोजल सोचल मन परल थार भाषा के गीत सुना एक कार्यक्रम में सहभागी जनई भी करा मैं आप निवेदन करता हूँ करीब करीब 1:45 बजे से साथ में मजा मजा गीत संगीत हमें सुने नहीं बाटी करना मैं ठीक ठाक गीत जोड़ अब अपने कन गलत गीत के पास मैंने बाटू डायल करती कर भी सुन 91-561-255 लाइन खोले बा

0: ওড় কে চুনরিয়া ধানি রে ধানি হো ধানি রে ধানি হো হো ধানি রে ধানি।
1: বিলকুল রমাইলো গীত জোড়ি কার্যক্রম মে অঞ্জু পন্থা কী আওয়াজ মে ওম প্রকাশ গুঞ্জিহার কে শব্দ রচনা মে কার্যক্রম জোড়ি আপনার নিকলা একদম রমাইলো গীত রহে কার্যক্রম ই কেসি নাতা থারু ভাষা কে ফিল্ম সে লেহল গীত রহে ই একদম রমাইলো গীত একদম মনমোহক গীত আপনার একদম মন পড়ল মিন একদম মন পড়ল গীত আর हमने अपने गण के संगे बाटी विशेष करके अपने के रोजल खोजल सोचल मन पड़ल विशेष करके अपने के मतलब इच्छा में पड़ल गीत हमने अपने कन सुनाई दी सुनेना हो तो थारू भाषा में कौन गीत सुनना चाहबी अपने के थारू भाषा के कोई भी गीत सुनना इच्छा हुई रुचि हुई अवश्य हम कॉल कर भी और कह भी मैं ई गीत सुनना चाहत हूँ गीत के बोली हो गीत मन पड़ने के दुठो कारण ये हो और अंतिम में चाह एक जन के नाम लेवी कल से दुठो कारण सहित ई कारण से मिहन ई गीत मन पड़त कह दुठो कारण बतेवी और अंतिम में चाह एक जन के नाम लेवी कल से गीत हमें अपने सुना तो थारू भाषा के गीत अपन रोजाई में पड़ल हुई कल से हम कॉल करे पड़ रही फोन करे पड़ रही 091-5561-256 जही हमार नंबर हो करीब करीब 1:45 बजे से हमारे यात्रा खोला के बाटी क्यों यात्रा करती बाटी अपने एक जही सहभागिता हमार संग संगे मतलब रहना चाहिए का नाम मोर कहा हो तो कार्यक्रम में सहभागी जन अटे करी कार्यक्रम में अटे करी और संगारियों के विशेष करिए भरखर रेडियो खोल भी कल से अपने सुनती बाटी रेडियो टीकापुर FM 101 MHz मार्फत उसके की हमारे वेबसाइट जहां इंटरनेट के पहुंच बा उठाऊ में अपने के हम www.tikapurfm.org मोबाइल एप tikapurfm हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत फिर अपने के इंटरनेट के पहुंच और संगारियों के अपने ठाव से सुने सकिए का नाम जानकारी करती रह तो डायल करते कर भी अपन रोजल खोजल मन पर गीत सुने के लग करीब करीब 1:45 बजे से यात्रा करते रहिए कहना जानकारी करती फैन से एंजॉय कर छोड़ो मैलो गीत से गीत के पास महीने बार डायल करते कर भी सुने का 95-61-256।

हजुर पानी बौसार से बालम अंजना गुरुङ और रामकुमार कठरे का आवाज में रहे थारू भाषा के फिल्म डगर से लेली गीत बाटो में हमीसंग भर्खर रेडियो खरल विकल से सुनी बाटी रेडियो टीका पर एफएम 101 मेगाहर्ज जस्तो कि हमारा वेबसाइट www.tikapureefm.org मोबाइल एप टीका पर एफएम एप हमारे पात्र मार्फत में सुने से ठीक नाम जानकारी करम इंटरनेट के पहुंच संगारी कौशल करती बाटी हमारे संगे शेयर करे आई अपने के खेतवा सेकली या नहीं सकली अपने उनके कौन सा करती बाती मतलब खेतों से कर हुई बिगल से कहा करती बाती नहीं से कर हुई बिगल से कहाँ सम पुगेली कतर तैयारी बा कौसी की अपने उनके खेतों लगाई थी पानी होनी खासे मजा के बरसा के पानी नहीं हुई थो अब हम लगभग 14 गते संध्या से गुड़गट गुड़गट गुड़गट पानी देखा पड़ल अब 15 गते देखा पड़ल वैसे के 16-17 फाटफुट को 16 गते फिर हमार एरिया और देखा पड़ल के एक बार और आज एक दिन तो कहो खास से दिन के पानी नहीं हो रात के पानी कहूँ कहूँ जोरदार पड़ल बा कहूँ कहूँ टिपटाप टिपटाप वर्षा धरती विषय ने मेरा एक पड़ल बा गोटगाट गोटगाट पानी के छिटा बूंदी अब देखा पड़ना मेरा एक हुईटी भाई कहूँ कहूँ जोरदार पड़ल बा वही कंचनपुर और एकदम ढेर वर्षा पड़ल बा उस तक बर्दिया और गोटगाट पड़ल बा तर कैलाली में कुछ कम पड़ल बा कंचनपुर के सवाल में कहती मई बाटो में मिशन के साथ देते संघारी सीबी जी ठीक ठाक जोड़न गीत के बाद से मैम डाल करते कर विश्व 91.5 105 1 2 5 के लाइन खुलाई बता सुनोगे एंजॉय करी रमाइलो गीत

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतके बाद स्वागत अब ठिबर एकैचोटि व्यापारिक विश्राम ओर्जा सर्टकम सर ब्रेक ब्रेकके पाछमै नै बाटो रेडियो छुर्क कहुँ बेरेज वित्तसँग एकैचोटि व्यापारिक विश्राम विश्रामके पाछमै नै बाटो डायल गर्दै गर विश्व 91.5 61.255 लाइन खुल्लै बा
1: कुछ
2: नहीं पायलट के 15 तक मारे सर लग के धो के सलग में तो हलचल नहीं कर मोर सपो के छापेना तो पहले जाके
1: मोर सपो ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
2: नहीं चलेना सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू सुरा से कह रहा हूँ मोर सपो देव गोपाल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूल से फिर वाकर में रहा 20 असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मोर सपा मोल देख पड़ना सपो है ना नमता हाथ से पकड़ा नहीं बीच
2: सर मोर सपो देखना से क्या करना
1: सपो मोल देख पड़ना से थे जात से मोल नहीं रह सकत अथवा मूलक कुछ देर पास समे सपा दस सकत वर्ष मोल अवस्था में फिर सपा हाथ से चलाए नहीं बीच बेन तनिक नम्मा लट्ठी ले चला कर मोल नि मोल कैसा जाना से बीठा
3: मोल सपन से सावधान रही मोल व मार्गी सपो होना पकड़ना व खेलना जिन करी मूलक कुछ देर बास समे सपा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान के लायक विज्ञापन से संपर्क करी
4: कर प्रदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अपनी ही जेबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
0: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जेब, पाछ से शुरू करल मने घर सीध जा सकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नहीं करत, का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, उट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानियों घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484-5343-26।
6: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
7: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन, सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
6: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
7: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
6: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ,
7: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग, मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान,
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले यौन रोग, मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार,
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म, बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर, टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ, सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।
12: हजुर व्यापारिक विषामकै पाँच एफएम से स्वागत भयो कार्यक्रममा, कार्यक्रममा बाटोमा मिशन निकै साथीसँग सिपिजी अब यो रेडियो टिकापुर एफएम 100 MHz, जस्तै हाम्रो वेबसाइट www.tikapureFM.org, मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स, हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत आफ्नो ग्राम सुनिश्चित ठिकाना म्याप टोकन जानकारी कति बाटो, जे जहाँ हुई खेतमे, बारीमे, दुकानमे, मकानमे, काममे, धन्दामे, बिजीमे, विद्यालयमे, यात्रामे, जहाँ हुई हमार अपन रोजल खोजल सोचल गीत सुनेक लगा, इतने करबी अठी पर देवर ने बटवा के एक ठाव गीत जोड़म, गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर भी 91-561-255 लाइन खुलेगा।

हजुर मजामजा गीत संगीत सुन्दै सुन्ती अब कार्यक्रमको निर्धारित समय डगर काटेर गल्टाटा बेके जना बेला हो गेल बा मारे त्रबलेसन रेडियो सुनको साथीले अभिनन्दन धन्यवाद दिन चाहम जे जहाँ हुई स्वस्थ रवि व्यस्त रवि मजा रवि खुशी रवि जहाँ रवि खुशी से रहबी का नाम है आरजी का नाम स्वस्थ से रहबी का नाम है आरजी करती टेक में बैठ के साथ सीपी है सीपी सर है सीपी जी है ढेर धन्यवाद दीदी अंतिम एक ठोर माइलो की छोटी मैं मिशन आका चाहूँ राम राम जय दे जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ नहीं दे दियो टीका पर एफएम सुनते कर दी।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनेना पट्टा निपैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 ओ 98486 39261
2: सिधापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
3: समस्या तो नहीं हुई
4: कुछ नहीं हुई सर पायलट के 15 सफा रख लू सर लग के घूमा फिर हूँ लग में हलचल नहीं कर मोल सपो के छापे न तो पहला जाके
3: मोल सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
4: नहीं चले न सर
3: विद्यार्थी भैया बाबू रहते कहो मोल सपो देखो कर से भैया न चलाए नहीं बिठा सपा मोला से भी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मोल सपा मोल देख पड़ना सपा है ना लट्ठी चला मोल नि मोल कैसा जाना से गिठा
5: मोल सरपंच से सावधान रही मोलवा मार गई सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा समी सपवा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची वो पहचान के लायक विज्ञापन से संपर्क करी
6: पर पदंश संबंधी पर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सकती था
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
8: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
9: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
10: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
9: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
10: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
11: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98584 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com
12: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
13: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
14: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
15: डेलिभरी का लागि
14: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
15: टीकापुर कैलाली
16: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
17: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली।

0: अनि घडी र औठीहरू पनि फुकालिदिन्छु। खै खै
1: हुन्छ रोशन, म त्यही बेलामा विवेकको जुत्ता र मोजा बिस्तारै फुकालिदिन्छु।
2: धेरै जसो सर्पको डसाई खतरनाक हुँदैन, समयमै उपचार गर्न सकेमा विषालु नै सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई पनि बचाउन सकिन्छ। सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई छिटो भन्दा छिटो उपचार केन्द्रमा पुर्याउन सके उनलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
3: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
6: वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: काफी कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हराए
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बातिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, कहा हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
4: विगत 27 वर्ष देखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर BCA BBA BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
3: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523312 र 523949।
5: बैंकले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जा छ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू उनीहरू विवरण मागिभर बैंकमी सोधौ सतर्क गरौ ठगी बठिए बचौ।
6: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश
7: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
8: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
9: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
10: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
8: डेलिभरी का लागि
10: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
8: टीकापुर कैलाली
11: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017-10672।
12: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: काकी
1: का कहतो भैया
0: अच्छा देखता घर कहाँ बटीन
2: दादू कहाँ समझी ना हो
3: पहलमानपुर से मनो भाई
2: आगे समझोर देवी ना
4: फोटो
2: बाबू सुनो ना ओकार ना ओकार हुई
1: रितु दीदी

0: आयो सानी कहाँ जाए तू सिरबुट लगाए के कहो न कहो
1: मैटो जाए तो बाजार सुलान धूप परी

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमकै सन्ध्या 5 बजे थारू भाषाकै खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर समय सीता चौधरी के राम राम अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल हम्रो पात्र हो नेपाली पात्र मफी सुन्ती रहबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका की 1900 नगरसभा संपन्न आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख 3,67,77,000 रूपया के बजट सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारी लाखौं ठगी के अभियोग में पादना पकड़ाऊ देश भर फैल मनसून मौसम विभाग द्वारा सतर्कता अपने आग्रह और रासपा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य द्वारा सफर पूरा खबर टीकापुर नगरपालिका के 1900 नगरसभा आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख 3,67,77,000 रूपया के बजट सार्वजनिक तन्नवा बुधवार बैठक सभा के संघीय सरकार मसे 65,56,00,000 रूपया सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मसे 14,66,00,000 रूपया आन्तरिक आय मसे 24,47,00,000 आय हुना अनुमान करगिल्बा आर्थिक विकास समिति के संयोजक एके प्रसाद नेपाली प्रस्तुत कलक विनियोजित बजेट मसे सशर्त बाहेक बजेट प्रशासनिक खर्चमा 21 करोड़ रूपया नगरपालिका के केन्द्र मसे संचालन हुन आयोजना केलाक 9,80,00,000 रूपया ढेरसिन शाखा हुकुनके केलाक 2,35,00,000 रूपया नगरवडा गौरव के आयोजना केलाक 9,50,00,000 रूपया नगर स्तरीय आयोजना केलाक 9,50,00,000 ओडा हुकुनके पूंजी के खर्च केलाक 6,31,00,000 रूपया विनियोजन करलबा नगर प्रमुख उप प्रमुख कार्यवाहक प्रमुख फे नई हुईलक टीकापुर नगरपालिका के ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारू को के अध्यक्षतामा बैठक सभामद नीति तथा कार्यक्रम वडा नम्बर 1 के वडा अध्यक्ष मोहन विका के प्रस्तुत कलशफे आर्थिक विधेयक वडा नम्बर 2 के वडा अध्यक्ष दीपक चौधरी प्रस्तुत कलबाट टीकापुर नगरपालिका के सभा के स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग करके स्थापना हुना उत्पादनमूलक उद्योग नगरपालिका पुछाईपना राजस्व शुल्क 10 वर्ष के लाख छूट दिना नीति लेलबा विदेशी नागरिक व्यवसायी दर्ता करना पलक 25,000 ढरोटी लेके व्यवसायी दर्ता कलक संचालन करना दिना व्यवस्था कलबा अवैध चोरी निकासी रोक्ना प्रहरी पकड़ाउ कलक हुलक दण्ड जरिवाना मसे नेपाल प्रहरी 20% प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन नीति लेवा अस्थका सरकारकी स्वामित्वमा घर जग्गा सरकारी अस्पतालकी जग्गा गुठीकी जग्गा मुनाफाके उद्देश्य निर्धारके संचालन कलक शिक्षण संस्था कम्पनी समिति प्राधिकरण बोर्ड के घर जग्गा मुनाफा के उद्देश्य नईधर के संचालन विभाग संघ संस्था के घर जग्गा धार्मिक संघ संस्था उनकी घर जग्गा खैना पानी मसान घाट दक्षिण सार्वजनिक स्थल उनकी घर हो घर जग्गा संपत्ति में कर नई लग्ना नीति लेलबा नगर पालिका के माताहत के बहाल में अलग अलग शटर वाला हुकुन के भाड़ा असूली के लिए विशेष व्यवस्था करगिबा नगर पालिका के आर्थिक विधेयक तोकलक समय में भाड़ा बुझेना जरिवाना छुटना से किस्ताबंद के सुविधा देना व्यवस्था करलबा टीकापुर नगरपालिका के भाड़ा में लगे सरम से 3 करोड़ रूपया से ढेर बढ़ी रूपया असूली करना बाकी रहलक राजस्व प्रमुख नंद बहादुर के सीबुटिलबाट टीकापुर नगरपालिका के नगर प्रमुख को उप प्रमुख दुनु पद की रिक्त हुलक अवस्था में कार्यभाग नगर प्रमुख के होके के विवाद अदालत पुगल पाछ नगरसभा करना ढिलाई हुलवा 2082 फागुन में कार्यपालिका के बहुमत सदस्य कार्यभाग नगर प्रमुख चुनलक हुलक राम बहादुर नगाजी जेठ 14 गते की कार्यपालिका के बैठक के बहुमत सदस्य हटेलक बलिराम चौधरी कार्यवाहक प्रमुख बनी रहे चौधरी की अध्यक्षता में बैठक कार्यपालिका बैठक असार 5 गते नीति तथा कार्यक्रम लनलक तैयारी करगिल रहता नागार्जी इंसियाक नई सर्वोच्च अदालत में पुगल पाछ चौधरी कार्यवाहक के रूप में काम नई करना के अल्पकालीन आदेश जारी करते असार 8 गते दुनुपक्ष बोली रही असार 8 गते सुनवाई असार 22 गते सरलपाछ सभा के ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारू के अध्यक्षता में सभा के बैठक में बैठक बजेट पारी करगिलवा असार 10 गते बजेट लाना पर्ना कानूनी व्यवस्था हो भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय की समय में सभा करना कलक निर्देशन अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करके फिर सभा करना पर्लक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सुमन धिताल बोटिलोट अदालत जैना पुहलक रामबहादुर नागाची सभा में उपस्थित नै रहे। नगरपालिकाकी पूर्व प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल संवैधानिक व्यवस्थाकी सम्मान गति जनसरोकारकी विषय हुलक राजनीतिक विवाद लम्बैती गैलक सभाकी सदस्यकी निकास दिना जरूरी लग बोटिलबाट वैदेशिक रोजगारी म आकर्षक तलब के प्रलोभनमा पर्के धेरसिन देशमा पठाई डुकाएकी ठगीकी अभियोगमा पादना पक्राउ पर्लबाट केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षी अनुसार सिन्धुपाल्चोके वाङदी लामा रामी छापके ललित बहादुर तामाङ धादिङके सन्तोषी लामा चन्द्रगिरी नगरपालिका आठके रामदास महर्जन ओ काठमाडौँ महानगरपालिकाकी पन्ध्र निवासी शरीफ गिरीह पक्राउ पर्लबा अभियुक्त वाङदिह अजर बैजान पठाई टुकैकी फे एकजना मसेरु 50,000 ललित बहादुर के कोसो भो पठाई दिनाकैकी 2,50,000 सन्तोषी स्पेन पठाइना बाहनामा एक जना मसेरु 15,00,000 रामदास युएके रोजगारीके प्रलोभनमा 7 जना मसेरु 45,00,000 ओ शरीफ क्यानडाके लोप देखाएकी एकजना हरु 20,00,000 ठगल रही उहाँकुनका काठमाडौँ उपत्यकीय अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सेहुलक प्रहरी टोली थेदोसिंह ठाउँमा से हाल पक्राउ कलबा कार्यवाही के लाग सक्कु अभियुक्त हाँ वैदेशिक रोजगार विभाग पुगिलबा। नेपालभर मनसुनी वायुकी प्रभाव सक्रिय हुलसँगै वर्षकी मनसुन देशभर पूर्ण रूपमा फैलिलबा। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी अन्तर्गतकी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी अनुसार मनसुनी वायुकी देशकी पश्चिमी सीमासम्म पुगलबा। आज गण्डकी ओलुम्बिनी प्रदेशकी बाँकी भागकी संग कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सक्कु क्षेत्रमा फेरि मनसुन धीरसे हुलसँग देशभर मनसुन फैलिलबा। नेपालमा सामान्यतया जून 13 तारीख से पूर्वी भूभागमा से मनसून प्रवेश गरी करीब एक हप्ताभित्र देशभर फैलिना कलबा। तर यी वर्ष सदर मिति से 6 दिन ढिलाई असार 5 गते जून 19 पूर्वी क्षेत्रमा से मनसून भित्र रह महाशाखाकी मनसून सक्रिय हुलसँग वर्षाकै कारण हुइसक्ना जोखिम ध्यानमा धरती अति अवधिक मौसम पूर्वानुमानकी जानकारी लिन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारण आग्रह गर्नुभयो। खोज खबरमा एकै विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वन्तरीय सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुइलकमा र बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध गर्दती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल भिडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हात जोड्नी सेवा टुटल हात जोड्नीमा प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जाँच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिकी नवनिर्वाचित पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य पद तथा गोपनीयताकी शपथ ग्रहण कलबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आयोजित एक विशेष समारोहकी बीच पार्टी सभापति रमिला मिछानी उहाँको निकै शपथ ग्रहण करेलबाट शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र सापे उपस्थिति नै रहित चितवनमा सम्पन्न पार्टीकै पहिलो महाधिवेशनमा सय 6 जना पदाधिकारी हो 99 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुलबाट सभापतिलाई मिछाने फे महाधिवेशन स्थलमा शपथ ग्रहण गर्सेक्ला रहे शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सम्पन्न हुलसँग आज केन्द्रीय समितिकै बैठक बैठन तयारी हुटिरहल ओहो पार्टी जनैलवा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सरकार नेपाल र भारत बीच रलक सीमा सम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक सन्धि नक्सा हो तथ्य के आधार कूटनीतिक माध्यमसे समाधान गर्न प्रतिबद्ध रलक बटुलबाट राष्ट्रिय सभामसे सांसद भुवनसंघ प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा जवाब दिँदै मन्त्री खनाल नेपाल र भारत बीचकी द्विपक्षीय प्राविधिक समिति थेरुफा के सीमांग कनकी विषय टुङ्गो रलेसेफे लिपिया धुरा लिपुले कालापानी सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षकी प्राविधिक टोली सीमाङ्कन गर्न बाँकी रलग बोटिलोबाट मन्त्री खनाल सीमाङ्कन टुङ्गो लग्न बाँकी रलग फाख नेपाल हो आधार प्रमाण हो नक्सा नेपाल संग्रहलग कटी प्रमाणकी आधारमा द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता मार्फत भारत संग्रहलग मतभेद टुङ्गे नचाहलग बोटिलोबाट सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा सीमा समस्याकी विषयमा पुस्तक प्रश्न के जवाब दिँदै मन्त्री खनाल सीमाङ्कन हुई बाँकी रलग क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा सीमा नापीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समिति काम थर्लक बोटिलोबाट अवशंकरकै परराष्ट्र मन्त्री खनाल मन्त्री मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु लकटी कुश प्रारम्भिक अध्ययन हो अन्वेषण देख लकटी थप अध्ययन हो अन्वेषणकै काम खानी तथा भूगर्भ विभाग मार्फत बोटिलोबाट सांसद भुवन बहादुर सुनार पुस्तक प्रश्नकै जवाफमा मन्त्री खनाल युरेनियम उत्खननकै लागि नेपाली सेना हो अमेरिकी सेनाकै बीच सम्झौता हुलेसेफे चर्चाकी विषयमा कुनो सत्यता निर्लक स्पष्ट पल्लबाट अस्थक सभाकै विशेष शून्य लगायतकै धेरै समयमा सांसद हुनकै उठलक विषयमा जवाब दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खनाल संविधान परराष्ट्र नीति हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धके स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्धलक सुशासन वा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दिशामा सरकारमा प्राथमिकताकै संग काम कति रहल बोटिलोबाट खोज खबरमा फेर्से विश्राम विश्राम पाछ फेर्से विश्वन त्रेवी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुए कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
8: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ
12: याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
13: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
14: विस्मा ट्रेडर्समा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: जनकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 के वडा अध्यक्ष तीर्थराज उपाध्यक्षीय अपंगता हुलक व्यक्ति हुनके सेवा कानून हुलसम्म सहयोगकर्ती रहल बटिलोबाट जनकी गाउँपालिका के जबलपुरमा अपंगता हुलक व्यक्ति केलाक सचेतनामूलक कार्यक्रम बोल्टी उहाँ यासिन बोटिलोबाट कार्यक्रम समापन गर्दै सृजनशील अपंग संघ जनकी के अध्यक्ष प्रकाश बम सहयोग कर्लक वडा धन्यवाद दिए। आगामी दिनमा सिन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हौसला मिल्ला बोटिलोबाट कार्यक्रम अपंगता के परिचय, अपंगता परिचय पत्र के वर्गीकरण, फाइदा अपंगता व्यक्ति उनके हक अधिकार लगायत के बारे में छलफल हुई रह कार्यक्रम दृष्टिविहीन अपांग संघ कैलाली के जिला सचिव जगत बहादुर चौधरी, नेपाल समावेशी अपांग विकास संघ के अध्यक्ष झनक बिक प्रशिक्षण दिल रही कार्यक्रम में काली चौधरी, पतिराम चौधरी, ललित परियार, तिलकराम चौधरी, लक्ष्मी तिमली सेनाकर के पांच जना प्रमाण पत्र सम्मान करीला। कार्यक्रम में जानकी गांवपालिका वडा नंबर ड के भित्तर के अपंगता हुलक 50 जना व्यक्ति हुकन सहभागी रहे। कार्यक्रम जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 के आर्थिक सहयोगको सृजनशील अपांग संघ जानकी गाउँपालिका आयोजनामा हुल रह। यो समाचार संघ खोज खबर बढ़ाई जनासी पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छो। टिकापुर नगरपालिका के 1900 नगरसभा सम्पन्न, आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख 3,67,77,000 रूपियाँ के बजेट सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगारी लाखौं ठगी के अभियोगमा पादना पक्राउ। देशभर फैलिने मनसून, मौसम विभागद्वारा सतर्कता पनि आग्रह। राष्ट्रपा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यद्वारा शपथ। लिटावकला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र छपिला चौधरी धन्यवाद देती। अबकला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई रू एकर पास 6 बजे के खोज खबर सुन्न सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम सुन्ती रवि राम राम।

0: जी भयापुग्नु प्रपदस्त ग्रहण रसरस अंगनामा ल्यान पुगेसे हिँडेरह
1: एक गति ना हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टी बाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने करिना
0: बैठा बैठा ब्रह्मान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्मान पकड़ बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्मा बेहोश हुइसेक नापिला कोर्से पाछा से पकड़ बैठ पर्थका
2: ब्रह्मान अगर हुन कहीं मई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लैजिन सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पारी था कतना ठाउँबाट मै असक मोटरसाइकल स्वयं सेवक उपलब्धबाट सजिला से हो छत्त पाजिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेरक सुचाक लगक एंटी भेनम भैलक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्थ
1: अपना उम्र जैने करी ना मई दुआन लगा के लादे
0: वहां न कटलक सपक फोटो खींचला बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो भिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई
3: सफ डल दारल कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे हन अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा रही सफ कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेट दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
6: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
7: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
6: अब त म ढुक्क
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
7: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
6: ला

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको हन्ला बाटी
1: ए ले ले ठिक है बा चल हाली भात वात खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी जबसम हमरे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी
3: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगके कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोका को लागि काठ का पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महंगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
0: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
0: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
4: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टीकापुर कैलाली
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
2: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर, बीसीए, बीबीए, बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
1: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर बिहारी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
3: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कॉपी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया न करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना।

मुक्तक, चुटकिला, शायरी, शेर, कोई भी नेतन के कैरिकेचर, चिड़ै चुरुंगर, जानवर की आवाज, कोई भी चीज, कोई प्रतिभा अपने में बा, कल से सुना एक लाख हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी। केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।